0: चली आ गई उधर कर लो फिर चली गई यार आ गई चली फिर चेक करके भी लाती यार
1: तू होगी बंद।

ये है आपका रेडियो, रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज़, वॉइस ऑफ बर्दिया, वॉइस ऑफ बर्दिया।

0: जय बो चल्ने गरी न होटल में आई बो सहुने पकिना मुर्गी बोलते से मुन्टी पिराइना तारो ने पीबो जीव थपराइना
1: अरे क्यों तो बताओ यार मधुबन की जिंदगी कैसी कटी ना।

0: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
1: हाँ त पोर्सालिक बात सम्झोट आम्मी न लक्ती रहर बरा पानी बस्दा बेला अस्ति चिम कहाँ रिक्दा सोचो त लट्ठी ठिक्कन घर डान डान पानी बर्से टिकी मन छटपटाए लाग
0: हाँ त धन्न ब्यालम्ब ढिकढिकुम सुरक्षित ठाउँ सरली नारी बत्ती
1: हाँ हो बर्दा
2: बर्खक ब्यालम्ब बहिया ढ्यार जोखिम रहत उह मार बहिया से बचकला पहिला सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यान हुलको से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: गंगा के रेडियो ठाउँ ठाउँ के आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ट्ज

0: यो हो रेडियो टाइगर 90.2 मेगाहर्ज। रेडियो टाइगर स्टुडियो टाइम। यति बेला साँझको 6 बजेको छ।
1: Wherever you are, stay connected with the wider world.